0: जी सर।
1: ठीक है
0: मॉर्निंग सेकंड इंस्ट्रक्टर सेकंड नंबर फर्स्ट आप चेक प्लीज।
1: आई सी।